मुसमुस हाँसन चुरुट थुती करुणीलाई हेरी बसे की छे कान्छी नानी नया लुगा फेरी कोरके आँखा लाई हेर्छन् ला।

पक्षी है कस्तो रहे छबिना के न हो गम के को केस्तो सुंदा फुरंग भई लाहुरे हर ढलके को लेकिन साले क्या है बंदे चुरुट हर सलके को केना भूल चस लाहुरे दाई।